नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने

0: मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्रे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रेस चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा, भ्रांति लिए बैठी हूँ अब तक, सावन था या प्यार तुम्हारा, कान्हा ने राधा से पूछा तुम मुझको सच सच बतलाना, भली लगी कब तुम्हें बांसुरी और अधर तक उसका आना, भीगे हम भी भीगे तुम भी, शायद था सौभाग्य हमारा, शायद था सौभाग्य हमारा। जी हाँ, सौभाग्य, उत्साह, उमंग और भक्ति

से सराबोर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारे जीवन में नई ताजगी भर देता है, क्योंकि सावन का मतलब है हरियाली, सावन का मतलब है श्रृंगार, सावन है कजरी, सावन है तीज, सावन है मेहंदी और सावन है प्रिय के मिलन की आस में पींगे बढ़ाती युवती, यानी सावन है झूला।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म थी बहू बेगम और आवाज़ थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम की, तो हमारे खिलाड़ी रोज कोई ना कोई खुशखबरी हमें दे रहे हैं। जी हाँ, लवप्रीत सिंह ने हमें दिलाया है एक और सिल्वर मेडल और सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक

जीतकर भारत के मेडल्स में और बढ़ोतरी की है और इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या हो गई है 17, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं और उनसे भी मेडल की उम्मीद है और मुक्केबाजी में भी मेडल की उम्मीद है। तो इन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है जिसका आपको इंतजार रहता है, समय है सवाल का। तो आज का सवाल बड़ा जायकेदार है, यानी आपको बताना है कि आपको कौन सा व्यंजन पसंद है, यानी आप ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, किसके हाथ का बना आपको ज्यादा पसंद है। तो लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके मेल्स का इंतजार।

जी आया सावन झूम के, ये झूमता हुआ गीत आपने सुना, फिल्म थी आया सावन झूम के और आवाज लता मंगेशकर और रफी की। और इसी के साथ जो सवाल हमने पूछा था आपसे, तो मेल आना शुरू हो गया है और इसमें सबसे पहला मेल जो कि नवीन भाटिया जी लिखते हैं, और भाई मानना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले मेल आपका आ जाता है। तो आपने लिखा है कि राजमा चावल आपको पसंद है और अपने पापा के हाथों का तैयार किया हुआ। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजमा चावल आपको पसंद है, वो भी अपने पापा के हाथ का तैयार हुआ और किया हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी अपने हाथों से बना के अपने पापा को भी खिलाया होगा, लेकिन हाँ पापा के जितना अच्छा बनाने की शायद आपकी कोशिश रही होगी, उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पापा का प्यार उसमें भरा होता है ना, वो भी तो बात है, इसलिए टेस्ट और बढ़ जाता है। और राजमा चावल की जहां तक बात करें तो देखिए ना, राजमा चावल दिल्ली के आसपास पंजाब और कश्मीर की डिश मानी जाती है, तो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोकप्रिय भोजन है। और दिल्ली की अगर बात किया जाए तो दिल्ली में तो और भी जैसे कि छोले भटूरे हैं, चांदनी चौक के पराठे, पराठे वाली गली ही है कि चांदनी चौक में, तो और चाट है और राम लड्डू, राम लड्डू जो है ना यहाँ के जो मूंग की दाल के बनते हैं वो पकौड़े और उसके और मूली और हरी चटनी के साथ जो इसे दिया जाता है, ये इसका लाजवाब है। मतलब इसका स्वाद दिल्ली में जो आता है ना वो और भी जगहों पे लोग बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं होता होगा। और फिर इसके बाद एक और मेल आई है हमारे पास, ये है अग्रसेन यादव जी की। तो अग्रसेन यादव जी भी कह रहे हैं कि हमें भी सारी चीजें पसंद है लेकिन दाल चावल इन्हें ज्यादा पसंद आता है, सादा खाना पसंद करते हैं। भाई तो पसंद की बात है, अच्छी बात है कि सादा खाना तो बिल्कुल सब खाने सब तरह के पसंद आने चाहिए और लोगों को पसंद करना चाहिए। और देखिए आप लोग खाने पीने की आज तो बात चल रही है, खाना पीना तो भाई सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इस बारे में तो आप हमें जल्दी जल्दी लिखिए और सारी मेल हम इंतजार कर रहे हैं आपका, मेल लिखिए और हमें बताइए अपनी पसंद के व्यंजन के बारे में और किसके हाथ का बना पसंद है आपको। और आप अपने हाथ का बना हुआ भी हमें बता सकते हैं कि आप वो जो चीज आपको पसंद है खाने में क्या आप उतनी ही अच्छी बना भी पाते हैं कि नहीं, तो जो भी है डिटेल इस बारे में लिखिए भेजिए। तब तक मैं मेल्स का इंतजार कर रही हूँ आपके। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जैसे दिन विशेष की हम बात करते हैं, तो आज है मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती, जिनकी रचनाएं अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास शोषण और गरीबी जैसी कठोर वास्तविकता

0: को उजागर करते हैं, लेकिन अंततः मानवीय मूल्यों और नैतिक जीत की ओर ले जाते हैं। यानी वे केवल अंधेरे और कड़वे सच को नहीं दिखाते, बल्कि उसका समाधान आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी रचनाओं की विशेषता भी है। इसीलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, सदगति जैसी उनकी रचनाओं में भारतीय किसान और गांव की आत्मा बसती है। उन्होंने जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश नीतियों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी बेबसी का इतना सजीव चित्रण किया है कि पाठक भावुकता के संसार में डूबते उतराते हैं। तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष और उसके हालात पर भी उन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर लिखा है। निर्मला, सेवा सदन, नैराश्य लीला, स्त्री और पुरुष, ठाकुर का कुआं जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री की दुर्दशा, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा की समस्या और पर्दा प्रथा जैसी इन कुरीतियों पर उन्होंने घोर उसका विरोध किया है। और उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना था। तो उनकी जयंती पर आज हम सब उनको सादर नमन करते हैं और सुनते हैं उन्हीं के उपन्यास गोदान पर बनी फिल्म गोदान से रफी की आवाज में ये गीत।
1: You are.

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज मैं हूं आपके साथ रेनू। आज है शुक्रवार, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारी बातचीत के केंद्र में होते हैं हमारे बुजुर्ग, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। घर में अगर दादा दादी, माता पिता, पोते पोतियां एक साथ रहते हैं तो उस घर में पीढ़ियों के साथ साथ परंपरा निवास करती है और उस घर में बसती है संस्कृति। ये सारी चीजें स्वतः भावी पीढ़ी को हस्तांतरित भी हो जाती हैं, लेकिन एक साथ रहने में, एक दूसरे के विचारों को समझने में कभी कभी कुछ मतभेद भी उभरते हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हर पीढ़ी की सामाजिक

सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं और हर दौर दौर के साथ सोच का बदलना स्वाभाविक है, लेकिन इस सोच के बीच में सामंजस्य बिठाना ही पीढ़ियों के अंतराल को कम करना है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपस में खुला संवाद हो, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना समझना। इसलिए बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात को कहना चाहिए और दूसरों की सुनना भी चाहिए। घर में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसको साथ में मिलकर कीजिए। फिर देखिए, समय अलग से निकालना भी नहीं पड़ेगा और एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे और एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसका जो है अवसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अपने दादा दादी नाना नानी को कई नई तकनीक सिखा सकते हैं बच्चे, तो वहीं बड़ों के अनुभव से उन्हें नई सीख मिल सकती है। विचारों का आदान प्रदान, सम्मान और सीख पीढ़ियों के अंतराल को काफी हद तक कम कर देती है। अपनी सोच को व्यापक रखकर, आपस में एक दूसरे को सम्मान देकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। इसी से अपने घर का वातावरण खुशनुमा बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि बुजुर्गों का साथ सौभाग्य वालों को ही मिलता है। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये लिख रहे हैं महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से। तो आप लिख रहे हैं कि मेरी बेटी का बनाया हुआ चिली पटेटो बहुत पसंद आता है मुझे, और जब भी वो आती है तो मेरे लिए चिली पटेटो जरूर बनाती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, आजकल के बच्चों को वैसे ये जो फास्ट फूड की चीजें हैं या चिली पटेटो है, चाउमीन है, मोमोज है, ये सब बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। थोड़ा कुछ ज्यादा भी कभी कभी खा लेते हैं और साथ में हम लोगों की डांट भी खाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, इस तरह से आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो यही तो मेल मिलाप और यही चीजें हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाती हैं। और इन्होंने एक ये है, गौरी शंकर का मेल भी हमें प्राप्त हुआ है नागलोई से। ये कह रहे हैं कि हमारी माता जी बनाती थी खीर और हलवा, और जो कि कढ़ी चावल भी इनके घर में बनता है, तो जो कि मैं खुशी से खाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, देसी खाने की बात ही कुछ और है। कढ़ी चावल और हलवा और खीर तो भाई क्या कहने हैं। और घर में उनके माँ का हाथ का तो वही जो मैंने कहा ना कि जब उसमें प्यार शामिल होता है ना, तो स्वादिष्ट तो खाना अपने आप हो ही जाता है। तो अभी बातें और होंगी, चलिए तब तक सुनते हैं एक गीत।

गीत अभी आपने सुना फिल्म थी सावन की घटा और आवाज थी आशा भोसले की। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह के जोश और जुनून की मिसाल पेश की है तमिलनाडु की रहने वाली नवनीत थम्मा ने, जिनकी उम्र है 116 साल। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अटूट आस्था और जज्बे से वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर की 3,550 सीढ़ियां पैदल चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उस समय उनका परिवार उनके साथ था, यानी लाठी के सहारे के साथ साथ उन्हें भावनात्मक सहारा देने वाले उनके परिजन उनके साथ थे। बस फिर क्या था, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए नवनीत थम्मा ने अपना ये सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनके इस जज्बे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सलाम किया और तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम ने भी परिवार सहित उन्हें विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी, तो शॉल उड़ा के उन्हें सम्मानित भी किया। तो नवनीत थम्मा को और उनके इस जज्बे को हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर सलाम करते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मेरा कसूर क्या है, आवाज़ सुमन कल्याणपुर की। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये भी हमारे रेगुलर जो है नियमित रूप से श्रोता है हमारे जो लिखते हैं, और ये लिख रहे हैं कि हमें तो अपने घर के पूरी छोले और चावल राजमा पसंद है और मैडम के हाथ का बना हुआ। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको घर का खाना पसंद है और घर के लोगों का बनाया हुआ पसंद है, तो लेकिन बहुत अच्छी बात है घर का पसंद करते हैं। और मैं एक बात और खाने पीने के बारे में कहना चाहूंगी कि जब आप कभी घूमने जाते हैं ना कहीं पे, तो घूमने के लिए वो जो मनोरम दृश्य आप देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, ऐतिहासिक इमारत देखते हैं, वो तो है ही, प्लस वहां का जायका जरूर लीजिएगा, लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक याद रह जाती है आपकी। और हर क्षेत्र का जायका, हर क्षेत्र के व्यंजन अलग होते हैं। जैसे कुछ कुछ व्यंजन, जैसे आप कहिए कि बिहार की बात जैसे हम करते हैं, तो लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा, दाल पीटा, घुंगनी चूड़ा, ठेकुआ की याद आती है। ठेकुआ जो कि छठ के त्योहार में विशेष रूप से बनाया जाता है, और छठ में बिना ठेकुआ के अगर कहा जाए कि छठ की त्योहार जो है वो संपन्न नहीं होता। और वहाँ की एक और मिठाई है खाजा और अनरसा, जो कि वहाँ पे इसके अनरसा जो है विशेषकर सावन के महीने में बनाया और खाया जाता है। तो ये भी, और सावन के महीने से देखिए जुड़ी हुई एक और मिठाई मुझे याद आई, घेवर। जब सावन का नाम आता है ना, तो घेवर का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। घेवर की मिठाई बड़ी लाजवाब होती है और इसका संबंध राजस्थान से है, और इस बहुत ही रिच मिठाई होती है इसका, क्योंकि वो उसमें देसी घी और मलाई, बहुत ज्यादा केसर, ये सब पड़ता है। और क्योंकि रजवाड़ों से संबंध रहा है ना इस मिठाई का, तो उसका प्रभाव भी अभी भी देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, और लखनऊ की बात करें अगर, तो मुगलई खाने का स्पष्ट प्रभाव वहां देखा जाता है, जैसे कि कबाब, बिरयानी, शीरमाल एक मीठी रोटी होती है, बहुत ही लाजवाब, बहुत मुलायम अच्छी रोटी होती है। और इसके अलावा लखनऊ में कुल्फी, मक्खन मलाई को पता है वहां ना, जो स्थानीय भाषा में, क्योंकि वो बहुत मुंह में घुल जाने वाली मुलायम सी मिठाई क्या मक्खन मलाई होती है, तो उसको लबे माशू कहा जाता है, वहां के लोकल लोग जो है उसको बोलते हैं। इसी के साथ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो वहां पे एक मटर का निमोना स्पेशल, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, खाया भी होगा कुछ लोगों ने, जाड़े के दिनों में मटर का निमोना बहुत पसंद किया जाता है, न मटर को पीस के बनता है, चावल की तहरी जो उसी क्षेत्र की लगभग कही जाती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की बहुत अलग अलग डिश होती हैं। अगर आप कहीं घूमने कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में, तो वहां की डिश भी खाना पीना बिल्कुल उसको करना चाहिए। और खाने पीने की बात चली है, तो अब बात कर ली जाए चाय की। चाय यानी सुबह, जी हाँ, अधिकांश लोगों की सुबह जो है वो चाय के साथ होती है, लेकिन सुबह की चाय हमारी सेहत पर डालती है विपरीत असर। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस की समस्या, पाचन तंत्र कमजोर होना और जैसी समस्याएं मतलब मिल जाती हैं, होती हैं। और ये आदत जो है ना सुबह की चाय पीने की, ये शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। चाय शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर सुबह की चाय हो स्वाद के साथ, सेहत के साथ, तो क्या कहने। जी हाँ, इसी तरह के हर्बल चाय तैयार की है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव की महिलाओं ने। इस गांव की बबीता रानी और अन्य महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाई है विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी, जिसकी तारीफ मन की बात जो कार्यक्रम रेडियो

से प्रसारित होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की। और इसमें पड़ता है लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची, सौंफ का उपयोग किया जाता है और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इस चाय को पसंद करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में और प्रयागराज के कुंभ में भी इसको खूब सराहना मिली थी। और सराहना के साथ साथ इस प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिल रही है। तो अगर इस चाय का लुत्फ आप भी उठाना चाहते हैं तो इस हर्बल चाय को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के या सीधे ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हैं।

घर के सामने। अभी इस दिन से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए खाने पीने की बात चल रही है तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुजरात जाना हुआ था मेरा, गुजरात की यात्रा पर, तो गुजरात में अनोखे जो उनके स्वाद हैं वो तो सब आप लोग ने भी लिया होगा और पूरे देश में वैसे हर जगह का, अब तो कोई क्षेत्र की विशेष की वो बाध्यता नहीं है, हर क्षेत्र का खाना हर जगह पहुंच ही जाता है। तो वहाँ के जो मेन जो वो डिश है वो है ढोकला, थेपला, फाफड़ा, खांडवी, और ये सब जो है ना अधिकतर बेसन के प्रयोग से बनती है और मूंगफली का प्रयोग वहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि मूंगफली की पैदावार भी वहाँ ज्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के खाने की अगर बात करते हैं तो तुरंत जो है वो बड़ा पाव, भेलपूरी, पूरनपोली, थाली पीठ, ये सब जो है एकदम से याद आ जाता है। और बड़ा पाव तो वहाँ की सबसे लोकप्रिय जो है वो डिश है। और मोदक, मोदक को कैसे भूला जा सकता है, अभी भगवान गणेश का जो गणेश चतुर्थी है वो आने ही वाली है और बिना मोदक के तो भगवान गणेश को मतलब वही पसंद है, बिना उसके तो वो पूजा होती नहीं है। और अब खाने पीने की बात चल रही है तो फायदेमंद खाने पीने के बारे में हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में आप लोगों को बताते ही रहते हैं। तो आज बात जो है करते हैं

चावल ककड़ी ही। और देखिए क्योंकि मौसम जब बदलता है तो खाने पीने का अंदाज बदलता है, क्योंकि हर मौसम में प्रकृति हमें कुछ ना कुछ नई सौगात देती है और जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और इसी के साथ आजकल जो मिलने वाली कमल ककड़ी है यानी लोटस रूट, उसकी उसके बारे में बताएं तो उसको आपने कई रूप में आपने भी खाया होगा, जैसे कि सब्जी बनाकर, कोफ्ते बनाकर, चीज फ्राइज, हनी चिली लोटस स्टेम या किसी भी तरह से खाया जा सकता है इसे। और ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत फायदेमंद होती है। इससे पाचन में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, क्योंकि कमल ककड़ी में बहुत सारा फाइबर होता है। इससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। इसमें विटामिन सी भी होता है जिससे कि शरीर की बीमारियों और संक्रमण से बचाने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है जो दिल को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें आयरन और कॉपर होते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो आजकल मिलने वाली ये कमल ककड़ी क्यों ना बनाई और खाई जाए।

0: अभी आपने ये गीत सुना, संग थी दिल तेरा दीवाना और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और देखिए आप लोग, हम सवाल कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रम में पूछते हैं और आप उत्साह पूर्वक इसका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से अपने सवाल और हमारे सवालों का जवाब देते रहिएगा। और जो है ये, क्योंकि इससे ना हम दो तरफा बातचीत कर पाते हैं, हम अपनी तो कहते ही हैं, आपकी बातें भी सुन पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मुझे यानी रेनू को इसी के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना

और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in the crowd. The family members also claimed several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Global Drug Regulatory Conclave 2026 will strengthen international cooperation and reinforce India's position as a global pharmaceutical innovation hub. In a social media post, Mr. Goyal said the two-day conclave, which commenced at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, is India's flagship international forum on pharmaceutical regulatory cooperation and convergence. The event has brought together heads and senior officials of national drug regulatory authorities across the world. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. Pakistani security forces opened fire on women demonstrators gathered in large numbers in Rawalpindi and Mirpur, where they were raising slogans against the crackdown. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovepreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Benchmark equity indices were trading with modest gains in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 78,161 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है दिलवाले. जी हाँ, दिलवाले 1994 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन हैरी बावेजा ने किया है. इस फिल्म में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं. रिलीज होते ही फिल्म ने शानदार शुरुआत की और सुपरहिट साबित हुई. साथ ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. इसी बात पर आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत.
2: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है.
3: सपना? सपना कौन थी?
4: मेरी अपनी, मेरी.
5: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था. मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था.

0: साथ सेल्फी लेंगे?
1: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, यस। चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले को संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 55 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक 1990 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक रही। इस फिल्म के दो गीत कितना हसीन चेहरा और जीता था जिसके लिए छा गए और जनता के बीच लोकप्रिय हो गए और आज तक लोग इसे रिपीट पर सुनते हैं।
3: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
4: कमान अरुण, कमान कमान कमान यार,
5: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
6: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
3: क्या मालूम।
6: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
5: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: श्रोताओं, इस फिल्म के अभिनेता अजय देवगन ने वर्ष 1991 में बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म फूल और कांटे से वो बॉलीवुड में छा गए। 1992 में उनकी दूसरी फिल्म जिगर भी सक्सेसफुल रही, पर साल 1993 अजय देवगन के करियर के लिए चुनौती बनकर सामने आई। उनका करियर डूबता नजर आ रहा था कि अचानक वर्ष 1994 में अजय देवगन के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उनकी किस्मत चमका दी, और ऐसी चमकाई कि आज भी वो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने बैठे हैं। और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि दिलवाले ही है, जी हाँ, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई दी। साथ ही साथ सुनील शेट्टी की किस्मत भी इस फिल्म ने चमका दी।
1: तूने सपना को हाथ लगाया,

0: सब पे हाथ डाला।
1: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
0: समान खींच लूंगा तेरी।
2: मामा जी,
1: अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

0: श्रोताओं आपको बता दें कि 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले का टोटल बजट 20.1 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 119 मिलियन की हुई थी। फिल्म सुपरहिट और शानदार रही। 40वें फिल्म फेयर अवार्ड में सुनील शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में नामांकन भी मिला। इस फिल्म में अजय देवगन अरुण के किरदार में है, सुनील शेट्टी इंस्पेक्टर विक्रम के किरदार में है, रवीना टंडन सपना की भूमिका निभा रही हैं और परेश रावल सपना के मामा ठाकुर के किरदार में हैं। साथ ही कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं।
1: चल चल कर बिहारी के साथ बगीचे में गाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे।
1: चल चल कर बिहारी के साथ बगीचे में गाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो?
1: बेबी कम ऑन, शंकर बिहारी के साथ।
3: ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
4: आई लव सपना। आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
3: आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना।

श्रोताओं, दिलवाले फिल्म की कहानी अरुण के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक झूठे मामले में फंसाया जाता है और वो सदमे में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है। सपना नाम की लड़की जिससे अरुण प्रेम करता है वो भी उससे दूर चली जाती है। फिर एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम को अरुण की सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो अरुण को न्याय दिलाने में उसकी मदद करता है। अंत में अरुण को सपना मिल जाती है और सच्चाई की जीत होती है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने अपने होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे विरोध मुजारे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे तो बाद संसद दियां दोवां सभावां नूं दिन भर लई उठा दिता गया है। सरकार दा कहना है कि वह वख-वख उच्च पदरी ते होर सरकारी दौरिया दौरान पाकिस्तान तो पैदा होण वाली सरहद पार दहशतगर्दी बारे दूजे देशां नूं लगातार संवेदनशील बना रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय ने कहा है कि निरंतर रहन योग आर्थिक विकास लई सरकार सनत ते ट्रेड यूनियन विचकार नजदीकी तालमेल जरूरी है। देश अज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह नूं उनां दे 87वें शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में चल रही दहशतगर्दी विरोधी मुहिम दौरान एक शक्की दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे विरोध मुजारिया दौरान कथित पुलिस कारवाई समेत कई मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण सोमवार तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। पहली बार कारवाई मुलतवी होने तो बाद जदों लोकसभा की कारवाई मुड़ शुरू हुई तां प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया ने जन्म अते मौत रजिस्ट्रेशन सोध बिल 2026 ते विचार करन ते इस नूं पास करन लई चर्चा की शुरुआत की। गृह राज मंत्री नितिन नंद राय ने विरोधी धिर के हंगामे दरमियान यह बिल पेश किया। संसद विच बिना किसी चर्चा के हंगामे दौरान बिल पास हो गया। संसदीय मामले बारे मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा विच हिस्सा न लैण लई विरोधी धिर की नुक्ताचीनी की थी। उन्हां अगे कहा कि उन्होंने कांग्रेस समेत विरोधी धिर नूं वार बार अपील की सी कि इस अहम बिल ते ढुकवीं चर्चा यकीनी बनाई जावे। विरोधी धिर दे हंगामे कारण सभा की कारवाई दिन भर लई मुलतवी कर दित्ती गई। सभा की अगली बैठक 3 अगस्त नूं सवेरे 11 बजे होगी। उधर राज सभा की कारवाई शुरू हुंदिया कई केंद्रीय मंत्रियों ने सभा के मेज ते अपने अपने मंत्रालय नाल संबंधित दस्तावेज रखे। देहाती विकास ते पंचायती राज बारे संसदीय स्थाई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। सूचना ते प्रसारण राज मंत्री डॉ. अरमुख मुरकर ने अपने मंत्रालय नाल संबंधित फर्जी खबरां नूं रोकण ते तरीकियां दी समीक्षा बारे संसदीय स्थाई कमेटी दी 22वीं रिपोर्ट विच शामिल सिफारशां नूं लागू करन

0: ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਥਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਗਾਈ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਅਤੇ ਰਸਦ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੀਮਾ ਕਲੀ ਰਾਮਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहिरों के दौरान और ज्यादा तहफ़ देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है और उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। 13 अजला में लगभग 8 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बहुत से मामलों पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी एहतजाज कर रही थी। जब दोपहर को लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल 2026 गौर खोज के लिए पेश किया गया और शोरगुल के दौरान किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करते हुए उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बिल का मकसद 1969 के मुतालिका कानून में तरमीम करना है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कार्रवाई में रुकावट डालने और बहस में हिस्सा न लेने पर अपोजिशन की नुकताचीनी की। उन्होंने कहा कि बहस के लिए खातिर खा वक्त रखा गया था। बिल मंजूर होने के बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और इजलास फिर से 3 अगस्त को होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये नया बिल ताखिर शुदा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दफात को मजीद सख्त बनाने और पैदाइश नीज अमवात के वाकयात की बरवक्त रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई की गरज से पेश किया गया है। बिल में इस बात की गुंजाइश है कि अगर पैदाइश या अमवात के वाकये की रिपोर्ट 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के यहां दर्ज कराई जाती है तो उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही दर्ज किया जाएगा और पैदाइश या मौत के वाकये की तस्दीक के बाद ही इसका इंदराज किया जाएगा और 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद रजिस्ट्रार के यहां इंदराज कराने की सूरत में इसे फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद ही रजिस्टर किया जाएगा। पैदाइश और अमवात का इंदराज कराना लाजमी है और इसके लिए जारी सर्टिफिकेट किसी भी फर्द को कानूनी शनाख्त फराहम करता है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

0: हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
2: सदन की गरिमा के साथ सवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
3: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग

0: लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: देखो झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले पांच दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
2: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गांवों को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के

अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। काकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
3: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
3: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
3: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
3: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी।
3: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
3: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
3: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
3: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
3: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
3: अब सुनिए आज का प्रश्न है वैमानिकी।

0: का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहां डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
2: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ

0: शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट,
0: कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ।

0: तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
1: हाँ?
0: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
1: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
0: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
1: आओ चलो।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
0: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
3: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। का धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
7: लयात्मक प्रस्तुति।
6: शीर्षक है
7: अभी न होगा मेरा अंत।
6: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: दर्शक पयंतेस एनसीआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यानी उत्पिन उमंग मीडियम वेविका अचैस आकाशवाणी कारगिले का ना सिरिन्युत

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत आलमी साझेदार मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी का मामला लगातार उठाता रहा है। मुल्कों और कसीर मुल्की इदारों के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के लिए 31 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। कुछ ही घंटों के दौरान चीन, तिब्बत और नेपाल में जलजले के कई झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तेज जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमा पर 4.5 बताई जाती है। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुनबों वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहिरों के दौरान और ज्यादा तहफुज देने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि वो दीगर ममालिक के सामने आला सतही और सरकारी मीटिंगों में पाकिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का मसला मुसलसल उठा रही है। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने 31 मुल्कों और 6 कसीर फरीकी ग्रुपों के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम किए हैं, जहां इस मसले पर बाकायदगी से बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत के रद्द अमल को बैन अलाक्वामी सतह पर खूब सराहा गया, जबकि मुख्तलिफ कसीर फरीकी फोरम्स के मुश्तरक ऐलानिये में भी इस हमले की मजम्मत की गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पुरअमन मुजाहिदीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताजा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहिदीन पर मुबैना फायरिंग का मामला शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताजा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकाम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहिदीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहिदीन पर फायरिंग की, जो कार्रवाई के खिलाफ नारे लगा रही थीं। अक्वामी मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर के तर्जुमान जेरमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि POJK में सिविल सोसाइटी की तंजीमों को मुजरिमाना करार देना और इज्तिमात पर सख्त पाबंदियां आयद करना इजहार राय की आजादी, पुरम एहतजाज और तंजीम साजी के हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में संगीन खदशात पैदा करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयले के कान में धमाका होने से कम 32 कानकुन हलाक हो गए। बताया जाता है कि कान में मीथेन गैस के भर जाने की वजह से ये धमाका हुआ। खबरों के मुताबिक 10 दूसरे कारकुन अभी वहीं फंसे हुए हैं। सरकार के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने बताया कि बचाव का काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के तमाम फंसे हुए कारकुनों को वहां से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। पाकिस्तान की कोयला कानों में इस तरह के जानलेवा वाकयात एक आम बात है, क्योंकि वहां की कानों में बुनियादी हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते। चीन, तिब्बत और नेपाल के कुछ हिस्सों में आज सुबह सवेरे जलजले के झटके महसूस किए गए।

की जानकारी देने वाले कौमी सेंटर एनसीएस ने बताया कि सबसे ताकतवर जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.5 थी। इससे पहले देर रात 12:50 पर तिब्बत में 4.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया और नेपाल में भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:18 पर 3.4 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसादे दहशतगर्दी से मुतालिक जारी अपनी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजौरी जिले में थाना मंडी सब डिवीजन के बंगाई जंगलात में मुश्तबा दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को तहस नहस कर दिया। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि तलाश की कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खाने पीने का सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दीगर अशिया बरामद की।

खाने पीने का सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दीगर अशिया बरामद की, जिससे पता चलता है कि दहशतगर्द इस खुफिया ठिकाने को एक आरजी पनागाह के तौर पर और लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बरामद शुदा अशिया में चावल की बोरियां, इंस्टेंट नूडल्स, एक गैस स्टोव, एक लाइटर, एक चाकू, मोमबत्तियां, एक प्लास्टिक की शीट और पुराना कंबल और प्लास्टिक का एक पानी का कंटेनर शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अहलकारों के अहल खाना ने इल्जाम लगाया कि मुजाहरे के दौरान पुलिस अहलकारों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भीड़ ने अगली सफ में तैनात पुलिस अहलकारों को घेर लिया, उन पर पथराव किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस अहलकारों के अहल खाना ने कहा कि इस वाकये में मुतअद्दिद पुलिस अहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मुबैना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवामी मुजाहरों के दौरान तैनात पुलिस अहलकारों को बेहतर तहफ़ फराहम किया जाए। एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने बताया कि उनके वालिद को मुबैना तौर पर हुजूम ने घसीटा, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना बीजेपी ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से राब्ता कायम किया है और वाजा तौर पर कहा है कि इजहार राय की आजादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल प्लेटफार्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी आवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका कि वो मुस्तैद है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इराक ने इन दावों की तरदीद की है कि उसे अमेरिका, सऊदी अरब के हालिया हमलों की पहले से जानकारी थी या उसने इन हमलों की मंजूरी दी थी, जिनमें ईरान के हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कम से कम 20 मेम्बरान मारे गए थे। इराक की हुकूमत के तर्जुमान हैदर अल अबूदी ने कहा कि बगदाद ने ना तो इन हमलों का इख्तियार दिया था और ना ही उसे पहले से इन हमलों के बारे में जानकारी थी। इराक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि ये हमले इराकी हुकूमत के साथ मिलकर किए गए थे। इराक ने इन इल्जाम के बारे में सऊदी अरब से भी सबूत मांगा है कि इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने सऊदी अरब पर ड्रोन्स हमले किए थे। सऊदी अरब ने कहा कि इस हफ्ते के शुरू में ड्रोन हमलों से बुनियादी ढांचे और राजधानी रियाज को निशाना बनाया गया था, लेकिन इराकी हुकाम ने कहा कि अब तक सऊदी अरब ने कोई सबूत फराहम नहीं किया है। वजीर आजम शिया अल सुडानी ने हमलों के बाद सऊदी अरब का दौरा भी मुलतवी कर दिया है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आलमी साझेदार मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी का मामला लगातार उठाता रहा है। मुल्कों और कसीर मुल्की इदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 31 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। चीन, तिब्बत और नेपाल में कुछ ही घंटों के दौरान जलजले के कई झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तेज जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेख्ता पैमाने पर 4.5 बताई जाती है। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुनबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरे के दौरान और ज्यादा तहफ़ फराहम करने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरम

ये वचन था बैजू बावरा फिल्म से, और इसके जो नगमा निगार थी वो थी शकील बदायूनी और मौसीकार थे नौशाद। इस भजन को सुनकर एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था कि लगता है कि भजन नहीं बल्कि भगवान खुद सामने बैठे हुए हैं और उनकी आरती की जा रही है। ऐसा एक और भजन आप तमाम सामाइन की नजर है।

चित्रलेखा फिल्म का नगमा सुन रहे थे आप ये भजन की सूरत में, और अगला भजन है नागिन और सपेरा फिल्म का। एक आवाज़ एक मरतब फिर मोहम्मद रफ़ी की है, मौसीकार हैं हरबंस।

0: निर्वचन के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है डॉक्टर सईद आलम का तहरीर करदा फीचर, कहानी के बड़े भाई साहब प्रेमचंद।
1: चेतावनी। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी।
2: यानी मैं प्रेमचंद हूं। लोग मुझे मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते और पुकारते हैं। मेरे नाम के पहले मुंशी क्यों जोड़ दिया गया है मुझे मालूम नहीं। इसकी वजह शायद ये ना हो कि मैं लिखता हूं, बल्कि शायद ये हो कि मैं बहुत और निरंतर लिखता हूं, किसी सरकारी दफ्तर के मुंशी की तरह। वैसे मेरा असल नाम भी प्रेमचंद नहीं, मेरा असल नाम धनपत राय है, यानी साहिबे मालुजर। ये नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। अगर वो और अधिक जीवित रहते तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मेरा जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस से 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में हुआ था। मेरे चचा तुम्हारे दुलार के मुझे नवाब कहते। उनकी देखा देखी घर और पास पड़ोस वाले भी मुझे नवाब कहने लगे, साथ ही संगी भी, वरना नवाब और नवाबियत से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। मामला यूं था कि पिताजी डाकखाने में मुंशी थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। जब मैं 7 साल का था तो माताजी का देहांत हो गया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ किस्से कहानियों की सौतेली माँ की तरह मुझे यातनाएं तो न देती, पर गाहे बगाहे झिड़कियों और उलाहनों से जरूर नवाजती रहती। इस अभाव को मेरी बड़ी बहन अपने लाड प्यार से पुर करती। पर क्या कहिए कि बहन की प्रथा अनुसार कम उम्री में ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल सिधारी। इसी 7-8 साल की उम्र में मेरा दाखला एक मदरसे में करवा दिया गया, जहां मैं एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी पढ़ता। मौलवी साहब में 2 खसूसियात थी। पहली ये कि वो पढ़ाते बहुत उम्दा थे, दूसरी वो हाजिरी न लेते थे। मेरे नजदीक दूसरी खसूसियत पहली से बेहतर थी। मैं कभी कभार मदरसे से गैर हाजिर हो जाता। उर्दू फारसी की मश्क के बजाय गोलियों और गुल्ली डंडे की मश्क करता, पर शत शत प्रणाम मौलवी साहब को कि उनकी वजह से मुझ में उर्दू और फारसी की शुद्ध

0: से उसी साल काशी में हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे, कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे। मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था।
1: कैसे आना हुआ?
0: मेरा नाम धनपत राय है। 11वें दर्जे में हिंदू कॉलेज में दाखला लेना चाहता हूँ, पर फीस देने की क्षमता नहीं रखता। पिताजी का
1: भाई, इस बात का संबंध तो कॉलेज से है।
0: जी जी, कॉलेज में दाखले के सिलसिले में ही
1: मैं कॉलेज की बात घर पर नहीं करता।
0: खैर, कॉलेज गया, रिचर्डसन साहब से मुलाकात हुई, पर निराशाजनक। फीस मुआफ ना हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर शहर की मुअज्जिज हस्तियों की सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी अर्जी पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं, कोई अपना पुछत्तर न था। कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की इंतजामिया कमेटी में थे। उनसे जाकर रोया, उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी, खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 हफ्ते से पहले न टला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन दरवाजे पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी, प्रणाम।
1: चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, पर कुछ अस्वस्थ दिखते हो बच्चा।
0: पुरोहित जी, ज्वर चढ़ रखा है पिछले 10 दिनों से।
1: ओहो,
0: गरीब के कर्जे की तरह उतरने का नाम ही नहीं लेता।
1: अभी एक जड़ी बूटी लेकर देता हूं, ठीक है? काली मिर्च में पीस कर खाओ, पलक झपकते ही रोग फुर हो जाएगा। पर ठीक होने के 7 दिन बाद तक औषधि लेते रहना।
0: जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी कि इस दवाई ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। पंडित जी, इस जादुई जड़ी का नाम बता दीजिए।
1: क्यों, क्या करोगे?
0: कभी आपकी अनुपस्थिति में बीमार पड़ा तो इसका सेवन कर लूंगा।
1: नाम बता देने से असर जाता रहता है।
0: एक महीने बाद फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल साहब ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा।
1: इतने दिन कहाँ थे?
0: बीमार हो गया था।
1: बीमार? क्या बीमारी थी?
0: मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर बुखार बताता हूं तो शायद साहब मुझे छोटा समझे। बुखार तो बड़ी मामूली बीमारी है, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी नहीं, बात बनेगी नहीं। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जिससे प्रिंसिपल साहब के दिल में दया भाव पैदा हो। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर।
1: पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट? और इतना जल्दी ठीक हो गया?
0: जी।
1: ओके, एडमिशन फॉर्म भर के लाओ।
0: मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। प्रिंसिपल साहब उस समय कोई क्लास ले रहे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था

0: योग्यता की जांच की जाए, ये नई मुश्किल पैदा हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी मजमून में पास होने की मुझे उम्मीद न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। किस्मत पर भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो चार ही मिनट में मुझे अंदाजा हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने मजमून के माहिर हैं। घंटा खत्म होने पर उन्होंने आज के सबक पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर सेटिस्फैक्ट्री लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था, इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। इन प्रोफेसर साहब ने गणित यानी हिसाब में मेरी परीक्षा ली। मैं फेल हो गया। फॉर्म पर हिसाब के खाने में अनसेटिस्फैक्ट्री लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। हिसाब का विषय मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट मैंने दो बार प्राइवेट पास करने की कोशिश की, दोनों बार हिसाब में फेल हुआ। तंग आकर इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। खैर, दौड़ पीछे की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम तू। मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता, किसी तरह हिसाब सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। पर इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया।
1: भाई, ऐसा है कि 5 रुपए माहाना मिलेंगे, अब बताओ मंजूर है?
0: वकील साहब, मंजूर तो है, पर समस्या यह है कि शहर में मेरा अपना मकान नहीं। कोई 1-1.5 रुपए तो किराए में ही लग जाएंगे। जो बचेगा उसमें ना तो मेरी गुजर बसर हो सकेगी, ना ही घर वालों की। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं।
1: मेरे अस्तबल के ऊपर एक कच्ची कोठरी है, वहां रह सकोगे? मैं उसका किराया नहीं लूंगा।
0: मैं तो अस्तबल में भी रह लूंगा। घोड़ा अपनी काया के विपरीत बहुत सहज और सरल जानवर है। मैंने 2 रुपए में अपना गुजर करके 3 रुपए घर पर देने का फैसला किया। कच्ची कोठरी में एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो माज कर लाइब्रेरी चला जाता हिसाब पढ़ने। लेकिन हिसाब तो बहाना था, उपन्यास वगैरह ही पढ़ा करता। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले साहब मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये नौकरी मिली थी। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। महीने के अंत में कभी 2 रुपए हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपए मिलते, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता, उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपए दे आता। दूसरे दिन फिर उधार लेना शुरू कर देता। इसी तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बाजार से 2-2.5 रुपए के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। जब महीने 2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया उसका सुखंता किया था। हम लोग भी उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने उधार लिए थे। वो पैसे उसने मुझसे मेरे

0: कर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन ब दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है ये ना जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन एक एक पैसे का चबेना खा कर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का इरादा किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन 1 पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतर ही रहा था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा,
1: अरे सुनो, अरे तुम्हें से कह रहा हूं, कहां पढ़ते हो तुम?
0: श्रीमान, पढ़ता तो कहीं नहीं हूं, पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा।
1: मैट्रिकुलेशन पास हो?
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: अच्छा, और नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है?
0: इच्छा तो बहुत है, पर नौकरी मिलती नहीं।
1: मैं चुनार में एक छोटे से स्कूल में हेडमास्टर हूँ। मुझे एक सहायक मास्टर की जरूरत है। 18 रुपए वेतन मिलेगा।
0: 18?
1: हाँ 18 रुपए।
0: इतनी आय तो मुझ थके हारे पथिक की कल्पना से भी परे है। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। ये सन 1899 की बात है। मैं चुनार के उसी स्कूल में असिस्टेंट मास्टर हो गया। पर 1 साल के अंदर अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई कि मेरा आबूदाना उस स्कूल से उठ गया। यूं तो स्कूल में मुझे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा किसी और चीज से सरोकार न था, पर एक रोज स्कूल की टीम और अंग्रेजी फौज की रेजिमेंट के बीच फुटबॉल मैच हुआ। अंग्रेजी फौज मैच हार गई। जीत के जश्न में मैं भी स्कूल के बच्चों के साथ शामिल हो गया। हिप हिप हुर्रे के जोरदार नारे लगाए। ये बात स्कूल की इंतजामिया को अच्छी न लगी। उसी स्कूल में मेरे साथ मौलवी इब्ने अली भी पढ़ाते थे। स्कूल इंतजामिया उनसे किसी बात पर नाराज हो गई और उन्हें स्कूल से निकालने पर तुल गई। मुझे लगा ये मौलवी इब्ने अली के साथ ज्यादती है। मैंने मौलवी इब्ने अली का पक्ष लिया। स्कूल इंतजामिया ने इब्ने अली साहब के साथ साथ मुझे भी निकाल बाहर किया, लेकिन इस बार मैं किस्मत का धनी निकला। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर बेकन की राय मेरे बारे में अच्छी थी। उनकी सिफारिश से मैं बहराइच के एक सरकारी स्कूल में टीचर मुकर्रर हो गया। ये सन 1900 की बात है। तब से 1921 तक मैं टीचर ही रहा। कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर, प्रतापगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बस्ती, गोरखपुर, पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा और लिखता रहा। इस दौरान मेरे साथ 1-2 गैर मामूली घटनाएं और घटीं। अव्वल तो ये कि मैंने आखिरकार इंटरमीडिएट पास कर ही लिया। मैट्रिकुलेशन पास करने के 1-2 बरस बाद नहीं, पूरे के पूरे 18 बरस बाद, सन 1916 में, जब मैं शहर बस्ती में स्कूल टीचर था। यानी मैं 18 साल बाद हिसाब के मजमून में पास हो सका? जी नहीं, मैं इंटरमीडिएट तब पास कर सका जब यूनिवर्सिटी ने हिसाब नाम के मजमून लेने की शर्त उठा ली। अगर जांच की जाए तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट पास करने में सबसे ज्यादा समय लेने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही होगा। दूसरी घटना जरा तफसील तलब है। नॉवेल तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला, असरार-ए-माबित, और दूसरा 1904 में, हम खुर्मा ओ हम सवाब। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। ये 1900

0: 1920 में गांधी जी से प्रेरित होकर मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद का दौर संघर्ष मगर संतुष्टि का दौर है। खादी की दुकान खोली न चली, अपना प्रेस खोला न चला, एकाध और नौकरियां की, निराश रहा, निराश किया। बंबई फिल्म नगरी का रुख किया, पैसे की चकाचौंध के बावजूद वहां भी कदम न जम सके। हिसाब में सदा का कमजोर जो ठहरा, दिमाग अब भी साथ देता है, हाथ पैर नहीं। इन दिनों लेटे लेटे कहानी लिखी है कफन, शायद ये मेरी अंतिम कहानी हो। मजीद क्या कहूँ, मैंने कलम और कागज के साथ वही किया जो किसान हल और बैल के साथ करता है। गर कबूल उस्ताद जहे इज्जो शरफ।
1: कहानी के बड़े भाई साहब प्रेमचंद। अभी आप प्रेमचंद की शख्सियत और खिदमात के हवाले से उनके यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर सईद आलम का तहरीर करदा ये फीचर सुन रहे थे। सदाकार थे डॉक्टर सईद आलम और अली मोहतशिम रजा। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी, मुआविन थे उमर सैफ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। आज के फिल्म मौसीकी के इस प्रोग्राम में सामईन हम आपको मोहम्मद रफ़ी के मुख्तलिफ मूड्स के नगमे सुनवा रहे हैं।
2: उस मुल्क की सरहद कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में आंखें फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था रवि ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए जीवन मृत्यु फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी के साथ इस नगमे में आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: एक और मुख्तलिफ अंदाज का नगमा समात फरमाइए, प्यासा फिल्म से नगमा निगार साहिन मौसीकार एस डी बर्मन।
1: Campeia, male, el male, campeia.

प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े।

वो फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निकाल थे साहिर, मौसीकार रवि। और समझ लीजिए, सुनिए हंसते जख्म फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजों में, नगमा निगार कैफी आजमी, मौसीकार मदन मोहन।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है मजा इसमें।

एक रंग ये महसूस किया होगा आपने, मोहम्मद रफी जिस नगमे को जिस तरह से गाते थे वो उसे अमर कर देती थी। अब जरा एक रंग देखिए देशभक्ति का।

चलो सो ये रंग देखिए, और उसके बाद एक रंग ये भी देखिए कि तमाम कलर जो है मुमकिन जितने थे वो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। हकीकत फिल्म का ये रंग देखिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: साथी।
1: यह एक रंग ये भी था और जाहिर है कि इन तमाम रंगों से मिलकर जिस शख्सियत ने जन्म लिया था, जो शख्सियत मशहूर मारूफ हुई थी, वो थी मोहम्मद रफ़ी, जिसे जब तक मौसीकी की दुनिया जिंदा है, जब तक मौसीकी कायम है इस दुनिया पर, तब तक मोहम्मद रफ़ी भी हमारे जहन दिल पर इसी तरह राज करते रहेंगे।

मसले पर बाकायदगी से बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत के रद्द अमल को बैन अलाक्वामी सतह पर खूब सराहा गया, जबकि मुख्तलिफ कसीर फरीकी फोरम्स के मुश्तरक एलानिये में भी इस हमले की मजम्मत की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को कत्ल कर दिया था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इनकलाबी शहीद उधम सिंह को उनके शहीदी दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि शहीद उधम सिंह की जिंदगी गैर मामूली जुर्रत और कुर्बानी का मजहर है और आने वाली नस्लों की मुल्क के इख्तदार आला और इज्जत वकार के तहफ्फुज के लिए हौसला अफजाई करती रहेगी। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतादिद मुल्कों के फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरक बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निपटना है। उसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीक़ाकार फराम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आजादाना जहाजरानी को तहफ़ फराम करना, तजारत के बैन अलाक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाब अल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में मुश्तरक बहरी मफादात के तहफ़ की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैन अलाक़वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। मेंबर मुल्कों ने कहा कि ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और ये किसी भी मुमलिकत या इत्तेहाद को निशाना नहीं बनाता। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी और कायद मुल्क है और यही इसका मुस्तकिल हेडक्वार्टर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी आवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका कि वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। इराक ने इन दावों की तर्दीद की है कि उसे अमरीका, सऊदी अरब के हालिया हमलों की पहले से जानकारी थी या उसने इन हमलों की मंजूरी दी थी, जिनमें ईरान हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के कम अज कम 20 मेंबरान मारे गए थे। इराकी हुकूमत के तर्जमान हैदर अल अबूदी ने कहा कि बगदाद ने ना तो इन हमलों का इख्तियार दिया था और ना ही उसे पहले से इन हमलों के बारे में जानकारी थी। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का, जबकि सीमा काली रमन्ना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इतला मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयला कान में धमाका होने से कम अज कम 32 कानकुन हलाक हो गए, जबकि 10 दीगर कान के अंदर फंसे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के खिलाफ एक FIR दर्ज की है।
इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन

बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है।

वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।

0: Dari Sapayantes, Purgia Khabarun Langyan Ninut Pin, Medium Vivika, Ngaca Sakashwani, Kargilikana, Zerinut. Waksput Tusu Tokane Minir Sumcu Sonsu, Kaseta, Program Yen Mezet, Rdeluksi, Hago.
1: Breast cancer jo hai, jaise har koi janta hai cancer ke bare mein. Cancer mein kya hota hai ki is breast mein bhi yahi cancer hai, kisi bhi umur mein, jaise ki breast cancer ke liye kisi bhi koi ladies hoga to usme ब्रेस्ट में जैसे ना एक ये बन जाता है, लंब बोलते हैं हम इसको, मांस बोलते हैं, वो बन जाता है, तो वो एक अलामत है कि हो सकता है आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है. तो उसमें आपको जब भी ऐसा कुछ ब्रेस्ट में या एक सिंगल ब्रेस्ट में या किसी किसी को दोनों में भी अगर ब्रेस्ट में ऐसे अगर लंब हो या मांस हो या अगर ऐसा कुछ है तो आपको शक होता है तो आपको आपके डॉक्टर्स के पास इलाज कराना है, उसके पास पहले चेकअप कराना है. तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है कि जब भी आपके ब्रेस्ट में आपके ब्रेस्ट में एक जाती है मांस एक बन जाती है या इसको हम एक गिल्टियां बोलते हैं वो बन जाती है, तो ये एक अलामत होता है. और साथ में क्या होता है कि बहुत टाइम से एक ब्रेस्ट में एक अल्सर जैसे ना कोई जैसे रेश होता है हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई जख्म जैसा कोई बन जाता है, वो बहुत टाइम से हील नहीं हो जाता है ब्रेस्ट में. तो किसी किसी को क्या होता है कि वो निप्पल जो होता है ना, निप्पल से कभी कभार जैसे क्लियर डिस्चार्ज या ब्लड इसमें से डिस्चार्ज आने लगता है बहुत टाइम से. चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट में जो लम्ब बनते हैं या हमारे अगर जुबान में बोला जाए तो कोई जैसे कि आपके पीपिया में छाना का तो स्क्रांसकंज छाना का तो या दो टाइम खचिक लूज दो बड़े छेंसू छाना दो.

0: किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, वीक इम्यून सिस्टम, वेट लॉस, नीड की प्रॉब्लम। नीदी प्रॉब्लम गामा गाते दी प्रॉब्लम उन गामा ड्रग्स लगनी वजह से गति फिजिकल हेल्थ पे का असर वजह से जो अब मेंटल हेल्थ पे का ची प्रॉब्लम वजह से जो ड्रग्स इज इंसानी मेंटल पे का असर मेंटल हेल्थ पे का असर वजह से जो जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, एंगर, कन्फ्यूजन इंसान ला खोरा और खुरी का कंट्रोल लुशस में जो पैदी से ड्रग्स लगनी वजह से अब फैमिली प्रॉब्लम ड्रग्स यूज भी वजह से क्या सिर्फ ड्रग्स लेन खान पहुंचा प्रॉब्लम छाचा मैं सुख बल्कि खोई फैमिली वंग फैमिली पूरा फैमिली जो है सफर करते हैं पेरेंट्स रोते हैं कि हमने क्या कमी रख दी थी इसकी परवरिश में ऐसा सोचते हैं या अति बाई बहन खुआ परेशान छाचा जीन दूसुख यूज भी वजह से खोए कंग असर छाचा जीन दुना फैमिली का जो है ट्रस्ट टूट जाता है यंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम देसिक ड्रग्स लेन में वजह से नाता पेने छाचा जीन खचिगिस कुचिन खचिगिस क्राइम भी कर सकते हैं इसमें ड्रग्स अगर ड्रग्स लेने लेने अगर का तो खो पेने सरना का तो खो यंग खो पेने मारने का तो खो कुचिन क्राइम बचिन यंग कुछ लोग तो घर का सामान तक भी बेच लेते हैं यहाँ जरने का तो कैरियर ड्रग्स सीधे से एडिक्सों से स्टूडेंट जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं और एम्प्लॉयज जो है एम्प्लॉयज का जॉब छूट सकता है गति ड्रीम सख छोचिन दुना गति फ्यूचर आ छोट जैसी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए गतंग स्टूडेंट्स सख सोसाइटी फ्यूचर चाहिए अगर गतंग ड्रग्स से करना दूर दुगना का तो गति देश ही फ्यूचर पर जो है ब्राइट होगा अब हमें गुड कंपनी चूज करना चाहिए गति गति फ्रेंड सर्कल सख जो है गलत फ्रेंड सर्कल है गति फ्रेंड माबा एक अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए गाता गाते पेरेंट्स अखना मुस्परा था इंदू परोशन खुआ गाते गाता अच्छी प्रॉब्लम उतना चिर गोशो उतना गाती चीज तक है गाते हमें शेयर करना चाहिए अपनी पेरेंट्स से दूना गाते सिर्फ और दूना गाते स्पोर्ट्स आना पार्टिसिपेट बार कुछ ऐसी न्यूज़पेपर बुक्स ऐसा नॉवेल्स ये सब भी पढ़ना चाहिए यंग योगा ना मेडिटेशन भी करना चाहिए दुना सोशल मीडिया नेगेटिव यूज़ में बा पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए अगर कोई फ्रेंड ड्रग लेता हो उसका मजाक मत उड़ाइए हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है उसका सपोर्ट करना है उसका मदद करना है हमें टीचर्स और उसके पेरेंट्स को बताना है उसे रिहेबिलेशन और कंसोलिंग की तरफ मोटिवेट कीजिए दोस्त को बचाना भी एक बहुत बड़ा काम है अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेरेंट्स को फ्रून लांग आती पेरेंट्स सुन ला खुरी खुनती फ्रून ला टाइम तक मर गोशा सिन खोची प्रॉब्लम का तो दुख खोची गोशा दुख ये सब उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए उन पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए खुआम ख्यांग चिपसना पास छह गुशा जिन ख्यां इतना परसेंटेज खुमर उशा जिन इतना मार्क्स लाना है अपनी फ्रेंड से ज्यादा लाना है ऐसा प्रेशर नहीं डालना है और दूना खूँ गस फ्रेंड यंती फ्रून हाँ गस फ्रेंड सर्कल का तो दुख खो सुना वो दोस्ती चोस दुख खो गस एक्टिविटीज का तो भी दुख उन सब पर भी नजर रखना चाहिए प्यार और कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है ड्रग्स का गवर्नमेंट और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट को ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकनी होगी अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी होगी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी होगी रिहेबिलेशन सेंटर्स बढ़ाने होंगे स्कूल दुना कॉलेज सगेका अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट भी दुखचा सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी अब मैं सुनसे कहानी तहत एक लड़का था हाँ खो स्कूल या नुक सबसे टॉपर इन मीन सुख एक दिन खो फ्रेंड जिस खुआ जिसकी खे सिर्फ एक बटराई बस हाँ दू मजा हूँ मत गाचा सख इस बात खेसा एक बटराई बस उसने सोचा कि एक बटराई भी कच्ची छोखा गसा एक बटराई भी लेकिन वही एक बार उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गई पहला न खुआ एडिक्स हूँ उदू लेन मी देखा ना खो खोए का ना पढ़ाई छूट आई सो मैं मतलब खो यंग मसल्स देखा खो कुलिया कुलिया खो खुनती फैमिली ना मदूर सो और कुछ सालों के बाद उसके पास ना कैरियर में ना हेल्थ में ना खुशी में इसलिए कहते हैं एक बार की गलती पूरी जिंदगी की सजा बन सकती है नसनी स्पीच पो दका खत्म बेद एक पावरफुल मैसेज के साथ से यस टू लाइफ से नो टू ड्रग्स ड्रग्स में गिव टेम्परेरी प्लेजर बट दे स्टिल योर परमानेंट हैप्पीनेस याद रखिए हेल्थ इज वेल्थ योर लाइफ इज प्रीशियस योर ड्रीम आर बिगर देन एनी एडिक्शन थैंक यू जय हिंद
1: दरिस हुक्तेस शहनाज फातिमे कना ड्रग एब्यूज अवेयरनेस स्कूल

0: Miriam Vivica, Aceaz Akashwani, Kargil Kanasirinut, Waspotus, Truk Sonsu, Kasata Akashwani, Delikana, Hindi Nagrezi, Khabarun Rilebe, Trilela, Rangbazet.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
2: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ही बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for the scheme during the period of five

0: मंगमू दरनेस नंग या दफ्तर या हटी कजुक से नंग बांग चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजत 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

አካሽፋኒ ከርጌሊከና ሰገት ፓኒፊያ ሰገቲ ፕሮግራም ፍሮቹፓ ናሳጃዱ ሴን ያንሰርጂ ገንደንገን ቦስካቱቼኒዮት ኒቾስና ያንታሚ ማዝጋማ ጁነ ሰላም ፖፍራት ማቸንሶን ሼክ ያንካኑን ሰገቲ ፕሮግራሙ ኒያኑ ጀርቢንግሪሲካ ሶማስ ፔራሪ ኩሪዮማት ዲሪን ጀርፒያና ያን ሶማስ ፔሪ ኩሪዮን ሴት ዲሪን ዲ ፕሮግራም ፒያኑ ሰርባዘስናላ ዩናይትድ ኔሽን ዲኬድ ፎር አክሽን ኦን ኒውትሪሽን ስኮርለስ ፔራሪ ዴጁክና ያንታንሱ ፔክ ቱሴ ክለፕቹጌ ካሰንገን ካኑን ዩናይትድ ኔሽን ዲኬድ ፎር አክሽን ኦን ኒውትሪሽን ዝርና ዲዩ ናቲር ጋስትሪቲያኑ दो मेनमा दुनिया त्यानोक मलसामंग में अनोक डेकेट पो मल्ला ख्योमत्सो यंग जेरबितोन पुदु इनसु कि यूनाइटेड नेशन जेरे आलमी छोपे गत इनसु खोस लोस चु गावांगतेस डेकेट जेरे तंग दो दियानोक जेरे ओत इनसु कि दि लोस चु अनोक दुनिया ति मलसामंग में अनोक पुवर्टी गावांगतेस गरीबी जेरे तंग ओदो शिक पिमिंगना दुनिया ति कंट्री मंग में अनोक लसनान सक्सट्रुलेन योजरे जरिंदुक यांग जर बचिंदुकी यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर एक्शन ऑन न्यूट्रिशन आनुक प्रोमाचिक मीमांसुन गान ला बैलेंसेड डाइट मथोबालु सितंग यांग मेल न्यूट्रिशन जरबी खुंगा ओदे जानी कमीन सक्षेतंग दोन सक मिछाचुक पिमिंगना दी लोर्चु स्ट्रुले इंजरे जरिंदुक दी लोर्ची प्रोग्राम पो स्ट्रुल जरे खसको तंखन पेंसु यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यंग जर बशिंद की 2016 एकन 2025 सुपचेक दी लोर्चु गतेस स्ट्रुल बरगोशा जिंजरे जरिंदुक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जरिंद की एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरे दियानो प्रोग्राम चिक डुलनियोती इंसुक यंग दी प्रोग्राम प्यानुक यूनाइटेड नेशन डिकेट फॉर एक्शन ऑन न्यूट्रिशन जरबी दी प्रोग्राम प्यानुक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जरबी आलमी छोपा इंगिस्कस लखथुतिका दी प्रोग्राम पुस्ट्रुलनियो जरे जरिंदुक छाना दियानुक नतांगा यंग स्पेराजी चिजरिंदुक की सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूट्रिशन जरेंची कॉन्स्ट्रुल स्पिनसु गावा आईसी एन टू जरिंदुक जो 2014 न फल्लगा गोजुक बसखन इंसुक यंग दी कॉन्फ्रेंसी

0: एक ऐसी तरीके से गति गति दी प्रोग्राम उन एक्शन प्लान उन चोचा ताकि गा सूची का गा मुश्किला चिका तो ना जैसे कि हेल्थ एक्सेस सही का तो लेप से मतना दून गंग मा सब दी लसकुन लेब लेब चुप पर पिकोंस कोशिश में दिया तीसरा कौन से कि एक इनइक्वलिटी दरेंगा ता बुसा बुमेन होगा ता बर्फेश होता है या मिसाल के तौर पर दरेंगा ती कौन पेनुक हमेशा दी वजह दरे दरे न खत्म सोन से कि बमुन ना दुख से लस बचा बुसान इस बाहर लसों से कमाई बचा चाना कौन से कि दी 10 साल का हम उस तरीके से प्रोग्राम को तैयार कर गेंगे गा सो तरीका चेक कर ना कि गता दे कौन पे कन इन इक्वलिटी खत्म छु और
1: बख्शीस
0: बुमुन लसम बराबर दे नथो बना कि एक फैमिली में बैलेंस तरीके का है चाहे बुसा
1: कस
0: सं कमाई बे बुमु सं कमाई बना का तो गता एक गति फैमिली सं दमो बसे सस्टेन से ता सर कुछ
1: बख्शीस
0: सर
1: सेरिंग मसर यारिस फेसपा बसे मॉल्स की गाचोक्स लादी थिम्पो डुलेन योजरे छाना दारे गाता यारे जांस बेराजी ची दियानो मॉल्स सर की बुमोना बुछे दियानो एक जेंडर गेप की
0: गेप
1: चोक्स
0: चीज
1: यहाँ
0: गेप
1: जो कसा जो गाता असना से नम जानो मंगमो थोनो चो दक्षना गाता दियो निंची सक्से सक्से गाता दक्षना गाती युलोनियां थोन छाना दक्षन जिस तरह गाता दियानो जेंडर गेप छा चोसला यादरे गाती दी दिनी टॉपिक पो यो पुवस्टी छाना यारेस गाचोक से दियानो संबेक या यारी समझे गाजोशियत की पुअर्टी या गरीबी जरत गतेस आम द गति यूलुनियानो खा मिसाल के तौर पर गति डिस्ट्रिक्ट वो गरीब सों या गति यूल पर गरीब सों जत छा दियानुक मेन वजूहत उन या गरीब चे सों सिन ओदे दिनदान गाचोस का तो चाजे ना लब ची के ना गरीब चाचाजिन या सबक मजर ना गरीब चाचाजिन रिसोर्स ही नता हजो निंसे ओदना गरीब चाचाजिन दो यारेस यारी समझो मोलचा यानी कि गता दियानो कास पुची छचाजिन पुअर्टी ज्यादा छे
0: बाकी सर
1: कस
0: गरीबी सबसे मेन रीजन चीची ना कास्ट चीची पुने जाना दुपे सर कि गता एक तो ना गता अवेयरनेस भी हम हो जाए नॉलेज
1: बचिस
0: जरना से गता दू लेकिन ना हम कि गत गत तरीके का गते गता सस्टेन बचने
1: बचिन
0: गत
1: जर हजो
0: दरे गता फिलहाल गते दुन दुन लांग गते इस पर रहता गति एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ना गता ना गति करगिल ना ना गते से ना गते सगेत की अच्छे से ना गतो गति दिया तुन पुबसे ना गति नॉर्मल तुन पुबसे ना कैश क्रॉप की तरफ गता कभी भी कन्वर्ट मसू
1: कैश क्रॉप है जो
0: मासूम अच्छा ना
1: बचिस
0: गाता यंचो पे गति एग्रीकल्चर फील है ना अगर कहते गाते ठीक बस है मीन लाती अवेयरनेस भी कहते पे ना देना तरीके खोरी का है तेरे गाता चुली खुरा गाती करिए लेना एक्सपोर्ट्स से बाहर लचे या गाती करिए लेना सी बकथ्रोन जरा या गाता जन
1: सॉस्क्यूर है जो
0: सॉस्क्यूर जरा
1: सॉस्क्यूर
0: या
1: कैसे
0: सॉस्क्यूर को ना जन दिन सब गाता सु अहमियत मेट पे अगर देना लस पो अगर कहते गाते सन लेना अवेयरनेस कहते पे ना गाता देना खुरी का गाती गाती सोसाइटी उतना दून गाँव गाता गेंदला गाता को एम्प्लॉयमेंट जनरेट बसे गाता गेंद में खेर वहीं चल पा चाहे
1: कैसे
0: सबसे बड़ा कास्ट पे देना मीन ला तक्सपा में दुखी गाज अलग आते संगत बिजनेस बचा से इंजरना या दूसरा गाती ना सबसे बड़ा रिसोर्स एंड कमी दुगया तीसरा गाती प्रूने अनुगाता गंगमा सबसे बड़ा कमी चीची ची दुगाता स्किल ना एजुकेशन से लेगी ना कमी दुख दियो गाज समेत सबसे अहमियत चार वर्षों की आती तालीम पुंग इस तरह से स्किल
1: स्किल
0: लिहाज
1: है
0: से
1: जो
0: ना ओ
1: कस
0: एक हुनर सीखते हो ना का तो
1: लक्ष्य शिव है
0: लक्ष्य
1: जो
0: सीखते हो ना का तो इंसान ची
1: बिल्कुल
0: मन बेकार मन रुषा मीन दुख
1: मीन
0: पाया चाहना पुअर्टी मेन रीजन पु देना तो कि तक्सपा मचा तो गज अल्लाह गता गतंग ची बसे चोचिन जर चेस पकोरा
1: बख्शीस
0: तेना गाती रियोत खानी फासिल उन गते सन लस परतांस गज अल्लाह गता एक्सपोर्ट बा या चतु दरे गता चुली लिहाज पकोरा तना सन गती करगिल से आए पिन दरे गती कना बाहर लस गता एक्सपोर्ट बा या दे ये दो मेन मसंग गती करगिल है ना बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिया गता दे सोस्क्यूर जर और इस बहुत सारे ऐसे चीज है जानो गता अगर कतो गती गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एकदम चिका तो लेन का तो लेना
1: कैसा
0: उरुनी कर लेस का तो बना बहुत सारे गति अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होत दून गांव मांग आता एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट बसे था मैं यंचा पाया
1: बख्शीस
0: दून मेन मांग आती को मैं बहुत सारे ऐसे रिसोर्स लू से तो पाया गा रिसोर्स सुनी का अगर का तो गाते सही बसे लेस का तो बना का तो बहुत सारे गाता गाती फील मांग में नो
1: बिल्कुल
0: गाता चुली लिहाज के जर सहयती लिहाज के जर या गाता देना कुरा जेर बेरपा जेर गतांग गमा तेरे गति कॉम्पेंस सिर्फ एक चीज की गता जना जनरेशन टू जनरेशन डूल इन पे यानी
1: डूलेन
0: गता सना
1: खनी
0: गाची अपो पास बिन पे गाची सा देना बच्चे से
1: बचिन जरा शो
0: उसको कन्वर्ट बमा ना मशेस पर पे है कि एक किस तरीके से गता एक सस्टेन प्रोग्राम की तरफ खेरे दियो बिजनेस से ना कन्वर्ट छ बस पे
1: कन्वर्ट
0: यान
1: बाय
0: चीज
1: एंचिन
0: पे
1: जरा
0: वन
1: शो
0: में दो
1: कस
0: चाना नी यंती मैथमेटिका स्ट्रोली का दी जरूरत पे कोशिश पुंगा ली देना है मैं कि गाता दी लेवल पे सब लेवल पे पे और गाते सा तने गाता अर्थ पास जिंदे बहुत सारे प्रो मास्टर्स बस रे अपना बेकार लूस पे सबसे बड़ा रीजन चीची पे देना दो कि एक तो कोनो लक्ष्य पे मिल दो
1: लक्ष्य में स्किल
0: ये
1: में
0: से कोनो दे अवेयरनेस पे मिल दो कि खुरी छान लो उतने रिसोर्स पे किस तरीके से एक बड़ा सा देना चाहे यो उतनी चीज सुन एक रिसोर्स
1: बिल्कुल
0: अच्छी वैसे कन्वर्ट बा यान चीज दर्शे वो
1: कस
0: चाना कासिस पुने देना दुख जो है ची के रिसोर्स ना
1: बख्शीस
0: तंग गमा रिसोर्स की कमी ये
1: बख्शीस
0: सिर्फ से ना अवेयरनेस पे मतलब जानकारी चाहे दिन
1: बिल्कुल
0: इस पे इंशाल्लाह लस का तो बना मैं तो कॉम पे उतनी गरीबी कहता हूँ कोले कोले
1: चाचा है
0: खत्म
1: जो
0: हो जाए
1: बख्शीस
0: सर
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट सवज दिरिंग पार्लियामेंट ये हाथे अनुग महात्मा गांधी मुजस्मिद एहतजाज बासों गावे अनुग जी पी एस सी पेपर मुबैन जुस्ते के लिए छा इत पिस्कोल सी बी आई पाने का चल चल मांग बेंच युत खन मिन बुमुन दोनों फ्रून यर्गसी महकमे वजीर दोना कोडरमाना भारतीय जनता पार्टी मेंबर पार्लियामेंट जरशतन सिंह की झारखंड मुक्ति मोर्चे लमस्ताने अनुग सरकार अनु खिमुर्सी से अनु पेपर लीक छायत पे खबर बीन युतिन गाँव अनु जेपीएससी पेपर संतरस युतिन आकाशवाणी न्यूज नगर अंचिक मोहतरमा अन्नापूर्णा देवी जर बसों की झारखंडी नौजवान सवैस दी मुद्दे का एहतजाज बेंचिंग दुखसीन का सता नमज स्कूल दिरिंग करगिल निमात सत सकेत पिथिक पुर डिग्री सेल्सियस की शुर सरगुआ शारियागा यंगुंदे छन लचुजरुगा शारियागा ले दिरिंग निमा इन शुर सजबी अशारी अजबी यंगुंदे छन लचुक्सुम अशारी सिफर द्रास ले दिरिंग निमा इन शुर सजरुगा अशारी चिक यंगुंदे छन लचुंगिस अशारी अंगिस पदुम दिरिंग निमा इन शुर सगा अशारी सिफर यंगुंदे छन लचुंगिस अशारी अजबी Yang disketla dirin nima sasket pitik pu digri selches ni shur sazru ga shari jbi yang gonde san la sat bas pitik pu digri selches choga ajare se first tas na basumin de anem ba kashmani kergiligin khabarun cham se ijaz chaz bu sejju khuda ifagriyan

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। आप हम आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
1: प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज राज्यसभा में जरी सेक्टर के कामगारों की उजरतों का मामला उठाया। उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि काश्तकारी से वाबस्ता कामगारों की उजरतों में इजाफा किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 21वीं सदी उन नौजवानों की होगी जो मुख्तलिफ शोबों का इल्म यकजा करके पीचीदा मसाइल के जदीद हल दरियाफ्त कर सकें। एलजी आज लोक भवन जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अपनी डिग्री खुद डिजाइन करें प्रोग्राम और दीगर तालीमी इकदाम के आगाज के बाद मुनक्द तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को ऐसे कसीर शोबों पर सोचने वाले लोगों की जरूरत है जो किसी एक मजमून तक महदूद ना हों। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुस्तकबिल उन लोगों का है जो इम्कानात को पहचानते हों और एक इकदाम तलबा को अपनी तालीमी राह खुद बनाने का इख्तियार देता है। इस दौरान दी एशियन स्कूल जम्मू के तालिब इल्मों ने आज लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। एलजी ने तालिब इल्मों के मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में वाक़ तारीखी इमाम बारगाह और जम्मू सूबे के सांबा जिले में सकाफती मकाम पुरमंडल की तजदीद कारी के लिए कुल 13,75,00,000 रुपये की रकम मंजूर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी देते हुए वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा है कि इमाम बारगाह जड़ीबल की तजदीद पर 6,59,00,000 रुपये की रकम खर्च की जाएगी। पोस्ट में कहा गया है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में मजहबी और सकाफती मकाम को तहफ़ फराहम करने के सरकार के अज़म की अक्कासी होती है। मेंबर असेंबली कंगन मियां मेहर अली और एमएलए करना जावेद अहमद मिर्चाल ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके अपने अपने हलके की तरक्याती जरूरियात और लोगों के मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। इस मौके पर वजीर आला ने लोगों के जायज मुतालबात और तरक्याती तरजीहात पूरा करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि सरकार हर हल्के की यकसां तरक्की की वादाबंद है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर के सनअतकारों और कारखानादारों से कहा है कि वह मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के वसायल पैदा करने की खातिर स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट कैंप्स का इनेकाद करें। नायब वज़ीर आला ने आज कठुआ जिले में भुगताली इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां इंसदाद सैलाब के मनसूबों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने यह प्रोजेक्ट वक्त मुकर्रा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज एक मीटिंग के दौरान हल्के इंतखाब जड़ीबल के जल शक्ति महकमे के तहत जारी मुख्तलिफ स्कीम और प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में हल्के के मेंबर असेंबली तनवीर सादिक के अलावा जल शक्ति महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर ने अफसरान को हिदायत दी कि एमएलए मौसूब की जानब से उठाए गए हल्के में फूरी तवज्जो के हामिल स्कीमों और प्रोजेक्टों को तरजीही बुनियादों पर मियाद बंद सूरत में मुकम्मल करें ताकि अवामी मसाइल का इजाला हो सके। हुकूमत ने बेदों के दरख्तों के अहियाई नाव के लिए एक नक्शराह मुरतब करने का फैसला कर लिया है ताकि विलो वर्क्स की पैदावार की अजमत रफ्ता बहाल की जा सके। इस सिलसिले में जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राणा ने महकमे जंगलात और माहौलियात को हिदायत दी है कि पूरी वादी में विलो कल्टिवेशन को एक मरबूत मुहिम के तहत शुरू किया जाए ताकि इमारती लकड़ी के साथ साथ क्रिकेट बैट्स की सनत को फरोग देने में मदद मिल सके। इन बातों का इजहार वजीर ने श्रीनगर में महकमे जंगलात की एक मीटिंग के दौरान किया जिसमें चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अलावा महकमे के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी काबिना ने मुल्क में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की अमलावरी को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबिना मीटिंग के बाद इत्तला और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि योजना का मकसद तवानाई की बचत के निजाम के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्टों को फरोग देना है। ये स्कीम अगले 5 बरस तक अमलाई जाएगी और इसके लिए 50,70,00,000,000 रूपये की रकम मंजूर की गई है। काबिना ने मुल्क में खेलो इंडिया स्कीम को वसत देने का मनसूबा भी मंजूर किया है जिसके लिए 36,441,00,000 रूपये का खाका तरतीब दिया गया है। इसके अलावा पीएम किसान को वसत देने के लिए 31,56,14,00,000 रूपये और समुद्रा मंथन के अमलावरी के लिए 8,40,84,00,000 रूपये के मनसूबों को भी मंजूरी दी गई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जबलीपुरा बिजबिहाड़ा की मेवा मंडी में आजकल काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मंडी में सेब के गाला किस्म की पहली खेप पहुंच गई है और ये सेब अच्छी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
2: यहाँ गाला सेब का फसल इन दिनों अच्छे खासे नरखों पर फरोख्त हो रहा है और इसे मालिकानी बागात फ्रूट डीलर्स और यहाँ काम कर रहे मजदूर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

0: वहाँ पहुँच कर हमने कई फ्रूट डीलर से बात की तो उन्होंने कहा,
1: सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है, गाला वैरायटीज और हमारे पास ये अर्ली रेड वैरायटीज नहीं होती थी, तो हमारा सीजन 15 सितंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन गाला की स्ट्रेन और जो हमारे पास रेड डिलीशियस है ये इसकी वजह से हमारा जो सीजन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। जो भी कनेक्टिविटी है हमारी, जैसे सोपोर से लेकर हमारी कम से कम उधमपुर तक जितनी भी कनेक्टिविटी बनती है, जो जो हमारे वहाँ पर MLAs हैं, अगर वो इन चीजों को खुद देखें, जैसे 10-10, 50-50 किलोमीटर अगर उनके अंडर आते हैं तो वो खुद इन सिचुएशंस को मॉनिटर करें, ताकि जो हमारा ये माल है ये स्मूथली हम अपनी अपनी डेस्टिनेशन थ्रू आउट इंडिया तक पहुंच सके, ताकि ये जो मजा है ये पूरा हिंदुस्तान ले सके।
0: उम्मीद यही की जा सकती है कि इस साल फ्रूट सीजन आसान तरीके से चलेगा, जिससे यहाँ की मईशत को काफी वसत मिलेगी। तसद्दुक रशीद, आकाशवाणी न्यूज, अनंतनाग।
2: जम्मू कश्मीर में मनकद होने वाले पहले बैन अक्वामी फिल्म फेस्टिवल IFFJK में शिरकत और फिल्मों के इंदराज के लिए आखिरी तारीख कल यानी 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। फिल्में कल रात 12 बजे से पहले पहले दाखिल की जा सकती हैं। मेले के लिए अब तक 50 ममालिक से 900 से ज्यादा फिल्में मौसूल हुई हैं। काबिल जिक्र है कि IFFJK 7 से 10 सितम्बर तक श्रीनगर में मनकद होगा। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नशर होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। ये बुलेटिन अब 4 अगस्त मंगलवार से हर दिन शाम 6:15 पर नशर हुआ करेगा। महकमा डाक कौमी सतह के खतूत नवेसी मुकाबले का इनेकाद कर रहा है। ढाई अखर खतूत नवेसी मुहिम 2024 के तहत ये मुकाबला कल यानी 1 अगस्त से शुरू होगा और अक्टूबर की 31 तारीख तक जारी रहेगा। इस बरस खतूत नवेसी के मुकाबले का मौजू ए लेटर टू मदर अर्थ, माई प्रोमिस टू प्रोटेक्ट नेचर रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासी दर्जे की बहाली के लिए उनकी जमात जिद्दोजहद जारी रखेगी। एक बयान में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहां के अवाम के मफाद में काम किया है। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने कहा कि यूटी में सभी कबायली तबकों की बहबूदी के लिए उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली सरकार ने बामाने इकदाम किए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने मुल्क की खलाई टेक्नोलॉजी के फरोग और दिफाई साजो सामान को तैयार किए जाने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की कर रहा है। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में हर घर तिरंगा मुहिम और तिरंगा यात्रा के लिए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर अफसोस का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश तर्जमान डॉ ताहिर चौधरी ने आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर पाकिस्तानी हुकूमत की नुक्ताचीनी की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में अपनी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन के भंगाई जंगलात में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाकर इसे तबाह कर दिया है। एक मुसद्दिका इतला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी अधिकारियों ने इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद जंगल में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाया गया। मनशात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग में मोहम्मद इरफान खान नाम एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मजकूरा शख्स नई दिल्ली का रहने वाला है और आजकल अवंतीपुरा में आरजी तौर रिहायश पजीर है। उसके कब्जे से ब्राउन शुगर की कुछ मकदार बरामद की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय अदब की मारूफ शख्सियत और अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी और तख्लीकात के जरिए भारत के हर तबके की आवाज को उजागर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीद उधम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत अदा किया है। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए दी जाने वाली उनकी कुर्बानी को नई नस्ल हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वो आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाई अड्डे की तामीर पर 5,640 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। वजीर आजम दीगर कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करने के अलावा कई एक का संगे बुनियाद भी रखेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों में मेडल जीतने पर सीमा काली रमना और लवप्रीत सिंह को मुबारकबाद दी है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबलों में 5 बार टाइटल जीतने वाली टीम ब्राजील भारत के

0: साथ एक दोस्ताना बैन अकवामी फुटबॉल मैच खेलेगी। इस बात का ऐलान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किया है। फेडरेशन के मुताबिक ये मैच इस बरस 3 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:42 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:32 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। मशरक वस्ता में तवील अरसे से जारी जंग व कशीदगी की बुनियादी वजह वो सियासी सोच है जो अपने जाती और इलाकाई मफादात के लिए अमन को पसे पुश्त डाल देती है। गुज़श्ता चंद बरसों से यह खत्ता मुसलसल अदम इस्तेहकाम अस्करी कार्रवाईयों और सिफारती तनाज़ियात का शिकार रहा है जिसके नतीजे में न सिर्फ यहाँ के ममालिक बल्कि पूरी दुनिया इसके मनफी असरात महसूस कर रही है। अप्रैल में तय पाने वाले मेमोरेंडम और जून में स्विट्जरलैंड में होने वाले अमन मुआहिदे के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि खत्ते में हालात मामूल पर आ जाएंगे। अमरीका, ईरान और दीगर इलाकाई व आलमी ताकतों ने भी इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया था और कई माह से जारी सिफारती कोशिशों के मुस्बत नतायज सामने आने लगे थे। इसी दौरान ईरानी कौम अपने साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूमात में मसरूफ थी कि अमरीका ने बाज गैर मुसद्दिक इतलात को बुनियाद बनाकर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। ये कदम इसलिए भी हैरान कन था कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा जंगबंदी नाफिज थी और एक मुआहिदा भी मौजूद था। इस कार्रवाई ने न सिर्फ खत्ते में कशीदगी को दोबारा जन्म दिया बल्कि आलमी बरादरी को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। देखते ही देखते ये तसादुम लेबनान, यमन और दीगर इलाकों तक फैलने लगा जिससे पूरे मशरिक वस्ता में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान शदीद अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी क़यादत और अवाम ने जिस साबित कदमी और हौसले का मुजाहिरा किया उसे उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि वो मुज़ाकिरात के जरिए जंग का खात्मा चाहते हैं एक मुस्बत इशारा समझा जा रहा है। ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि वो सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं करना चाहता बशर्ते कि पहले से तयशुदा मुआहिदों की पासदारी की जाए। हकीकत यह है कि जंग किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं बल्कि पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकिरात, एतमाद साजी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम से ही मुमकिन है। गजा से शुरू होने वाली ये कशीदगी अब कई ममालिक को अपनी लपेट मिल चुकी है। अगर आइंदा सिफारती कोशिशों को कामयाब बनाना है तो जरूरी है कि तमाम फरीक अपने वादों की पासदारी करें और मुजाकिरात को एक मौका दें। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान ने गैस से लदे 2 अमरीकी जहाजों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जिसके नतीजे में दोनों जहाजों में आग लग गई। इस हमले का मकसद ये पैगाम देना था कि अगर जंग मजीद बढ़ी तो आलमी समंदरी तिजारत और तवानाई की फराहमी शदीद मुतासिर हो सकती है। इसी वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया जिसके असरात दुनिया की मईशत पर भी मुरतब हुए। खलीजी ममालिक में बढ़ती कशीदगी ने वहां मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को भी तशवीश में मुबतला कर दिया है। दुबई में ईरानी अस्पताल बंद होने के बाइस सैकड़ों हिंदुस्तानी मुलाजमीन बेरोजगार हो गए जबकि दीगर ममालिक में काम करने वाले अफराद भी अपनी सलामती के हवाले से फिक्रमंद हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर हिंदुस्तानी हुकूमत ने फौरी इकदाम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सलामती से मुतलिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए मुख्तलिफ वजारतों की तैयारियों का जायजा लिया और हिंदुस्तानी मफादात के तहफ्फुज के लिए जरूरी हिदायत जारी की। ये मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर सलामती कमेटी की 4थी मीटिंग थी जिसमें काबीना सेक्रेटरी ने ताजा तरीन सियासी और सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। इजलास में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के जखायर इत्मीनान बख्श हैं और खाम तेल की मुनासिब दस्तियाबी के बाइस सरकारी रिफाइनरीज अपनी मुकम्मल इस्तेदाद से भी ज्यादा पैदावार कर रही हैं जिससे پیٹرول، ڈیزل اور دیگر ایندھن کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے ہندوستانی ملاحوں اور دیگر شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ بیرون ملک موجود ہندوستانیوں اور ان کے اہل خانہ کو بروقت معلومات اور ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح

उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने

का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया।

और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज

अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। शब के 8:15 हुआ चाहता है। लीजिए पेशे खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फिल्मी नामों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामिन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामिन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म मुस्कान से एक गीत, जिसे गाया है अनुराधा पोटवाल ने। गीतकार है समीर और संगीतकार निखिल विनी।

अभी आपने सावंत फिल्म में सोनू निगम को सुना, बोल थे सावंत कुमार के और संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला

0: गीत फूल और कांटे फिल्म से अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू की आवाज में गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम, इतनी भी क्या जल्दी थी। अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
1: हाँ?
2: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हीं को नामजद किया है ताकि कल जब मैं ना रहूं तो पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: नेक अल्फाज बोलिए, ये क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी गीत बलमा फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में पयामी सादिकी से लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप

0: बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। के समाचार, केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सबका उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 4,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित अधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंग पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे

0: सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी कुल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. सेंटर प्रूव

0: बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानिब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए ताउन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमलावरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौज की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तराक का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजिमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहीमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मौशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख

हर साल 26 जुलाई को पूरा हिंदुस्तान कारगिल विजय दिवस इस अहद की तजदीद के तौर पर मनाता है कि मुल्क की खुदमुख्तारी, सालमियत और सरहदों की तहफ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये दिन सिर्फ एक अस्करी फतह की यादगार नहीं बल्कि उन जांबाज सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने बर्फपोश चोटियों पर अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। सन 1999 की कारगिल जंग जनूबी एशिया की अस्करी और सफारती तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करने के बजाय खुफिया तौर पर अपनी फौज और तरबियत याफ्ता दरअंदाजों को भारतीय हदूद में दाखिल करके करगिल, द्रास, पटालिक और मुश्को सेक्टर की बुलंद चोटियों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। इब्तिदा में इन्हें मुजाहिदीन करार देकर हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई लेकिन जल्द ही नाकाबिले तरदीद शवाहिद ने वाजह कर दिया कि ये कार्रवाई बराह रास्त पाकिस्तानी फौज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में अंजाम दी जा रही थी। ताहम ये मनसूबा भारतीय फौज की पेशावराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बेमिसाल कुर्बानियों के सामने नाकाम हो गया। ऑपरेशन विजय हिंदुस्तानी अस्करी तारीख का एक शानदार बाब है। तकरीबन 18,000 फीट की बुलंदी, शदीद सर्दी, दुश्वार गुजार चट्टाने और दुश्मन की बर्तरी के बावजूद भारतीय फौज ने हर चोटी को एक एक करके दोबारा हासिल किया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दुश्मन बुलंदी पर था और भारतीय फौज को खुली ढलानों पर चढ़ते हुए हमला करना पड़ा जो अस्करी एतबार से इंतहाई मुश्किल और खतरनाक तस्वुर किया जाता है। इसके बावजूद जवानों ने अपनी जानों के परवाह किए बगैर दुश्मन के मजबूत मोर्चों को तबाह किया और कौमी परचम दोबारा सर बुलंद किया। कारगिल की जंग ने कई

ऐसे हीरोज को जन्म दिया जिनकी बहादुरी आज भी कौम को तहरीक देती है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की बेमिसाल कयादत, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और बेशुमार दीगर जांबाजों की कुर्बानियां हिंदुस्तानी फौज की रिवायात शुजात की रोशन मिसालें हैं। 527 से जायद भारतीय फौजियों ने मादर वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान किए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए, मगर किसी ने भी फर्ज की अदायगी से पीछे हटने का सोचा तक नहीं। करगिल जंग का एक अहम पहलू सफारती महाज भी था। पाकिस्तान की जानिब से हकीकत छुपाने की हर कोशिश आलमी बरादरी के सामने नाकाम साबित हुई। बैनुल अक्वामी सतह पर यह वाज़े हो गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी। दुनिया के अहम ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो अपनी अफवाज वापस बुलाए और बैनुल अक्वामी उसूलों का एहतराम करे। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी महाज पर नाकाम हुआ बल्कि सफारती सतह पर भी शदीद तन्हाई का शिकार हुआ। कारगिल ने यह हकीकत इशकार कर दी कि दरअंदाजी और फ्रेब पर मबनी हिकमत अमली देरपा कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। कारगिल की फतह ने हिंदुस्तान की अस्करी सलाहियत, सियासी क्यादत के अजम और कौमी इत्तेहाद को भी दुनिया के सामने उजागर किया। जंग के बाद सरहदी निगरानी, इंटेलिजेंस ताउन निगरानी के जदीद निजाम, फजाई व जमीनी हम आहंगी और अस्करी असलाहत को मजीद मजबूत किया गया। इन इकदाम ने आइंदा बरसों में सरहदी सलामती को नई मजबूत फराहम की। आज जब पूरा मुल्क कारगिल विजय दिवस मनाता है तो इसकी असल रूह सिर्फ माजी को याद करना नहीं बल्कि नई नस्ल को यह पैगाम देना भी है कि आजादी और खुदमुख्तारी की कीमत हमेशा कुर्बानी, नज्म व जब्त और कौमी इतिहाद से अदा की जाती है। कारगिल के शहदा ने यह साबित किया कि हिंदुस्तानी फौज हर मौसम, हर महाज और हर चैलेंज में वतन के दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। ये दिन हमें उस हकीकत की भी याद दिलाता है कि कौमी सलामती सिर्फ सरहदों पर तैनात सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जब कौम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी होती है तो कोई भी बैरूनी साजिश या जारियत कामयाब नहीं हो सकती। कारगिल विजय दिवस दरअसल उन अजीम सपूतों को सलाम है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान के विकार, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा किया। इनकी कुर्बानियां हमेशा आने वाली नस्लों के लिए जज्बे हुब्बुल वतनी, फर्ज शिनासी और बेमिसाल जुर्रत का सर चश्मा रहेगी। करगिल की बर्फपोश चोटियों पर लिखी गई ये दास्तान हमेशा उस अमर की गवाह रहेगी कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों के तहफ्फुज और कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने का अजम रखता है और इस अजम की सबसे रोशन अलामत हिंदुस्तानी फौज के लाजवाल बहादुरी और शहदा की अबदी कुर्बानियां है। न्यूज रील प्रोग्राम के लिए करगिल से मैं मोहम्मद अब्दुल्ला।